0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: त्योहार प्यार का पैगाम आप सभी को रेडियो ऑलिव की तरफ से ईद मुबारक
0: सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: का त्योहार प्यार का पैगाम आप सभी को रेडियो ऑलिव की तरफ से ईद मुबारक
1: सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 FM

तुरंत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास। बिंदास मॉर्निंग।

0: देखो तो हम पास, लेकिन सोचो कितनी दूरी है, कैसी ये मजबूरी है।
1: इंटरटेक विशेस यू ईद मुबारक।

0: 25 wishes you Eid Mubarak.
1: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: ईद की महकती शाम, चांद की रोशनी और खुशियों का एक हसीन जहान.
3: इस ईद हर लम्हा होगा और भी खास एट अबू सिद्रा मॉल.
2: आइए सेलिब्रेट करिए लयाली ईद 27th, 28th और 29th मई को शाम 6 बजे से 10 बजे तक, जहां इंतजार कर रहा है स्पेक्टेक्युलर अलादीन शो, लाइव एंटरटेनमेंट, एक्साइटिंग किड्स एक्टिविटीज और ढेर सारी ईद सरप्राइजेस. तो इस ईद फैमिली के साथ बनाए यादें सिर्फ अबू सिद्रा मॉल में. योर Ultimate Eid Destination.
4: Hi, I'm Udit Narayan here. Udit Narayan here. और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Olive. आप सब लोगों को Eid Mubarak. Eid Mubarak.
0: Radio Olive Eid Majlis.
5: Eid Majlis. Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
6: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक coupon or mega draw ticket.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: For Mary wishes you Eid Mubarak. Radio Olive Eid Majlis. Eid Majlis.
4: Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: Shah Beauty Center wishes you Eid Mubarak.
1: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद ब्रिलियंट कतार. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
3: Hey guys, this is Varun Dhawan aur aap sun rahe mujhe on Radio Olive 106.3 FM and aap sabhi ko Qatar mein Eid Mubarak.
4: Radio Olive Eid Majlis.
5: Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
6: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: का त्योहार प्यार का पैगाम आप सभी को रेडियो ऑलिव की तरफ से ईद मुबारक
1: ईद मुबारक
2: सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 FM
3: ईद यंग किंग खान यो यो हनी सिंगर

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर. कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन. या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक. सेव and win.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated.

0: Medical Center wishes you Eid Mubarak.
1: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
1: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
3: ईद की महकती शाम, चांद की रोशनी और खुशियों का एक हसीन जहान.
4: इस ईद हर लम्हा होगा और भी खास एट अबू सिद्रा मॉल.
3: आइए सेलिब्रेट करिए लयाली ईद 27th, 28th और 29th मई को शाम 6 बजे से 10 बजे तक, जहां इंतजार कर रहा है स्पेक्टाकुलर अलादीन शो, लाइव एंटरटेनमेंट, एक्साइटिंग किड्स एक्टिविटीज और ढेर सारी ईद सरप्राइजेस. तो इस ईद फैमिली के साथ बनाए यादें सिर्फ अबू सिद्रा मॉल में. योर अल्टीमेट ईद डेस्टिनेशन.
5: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कारमिल के साथ. विजिट कारमिल ग्रुप नाउ.
6: हाय, मैं हूं मनन शाह और कतर के सभी रहने वालों को ईद मुबारक. 106.3 FM रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास.
7: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस.
8: Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
5: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: का त्योहार प्यार का पैगाम आप सभी को रेडियो ऑलिव की तरफ से ईद मुबारक
1: सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 FM

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
2: Your daily surprise is here. Apna hala recharge karo aur pao free data ya minutes ka surprise. Claim karo Ooredoo app par. Offer valid hai 31st May tak. Experience more with Ooredoo.
3: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार.

0: Lifeline Hair Fixing wishes you Eid Mubarak.
1: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: सोचो, अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव and win.
4: The big biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry.
5: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
6: Ibrahim bhai, Eid Mubarak.
7: Eid Mubarak.
6: Taufik chacha, Eid Mubarak.
7: आप
6: चचा? मैं इब्राहिम. हर जुम्मे रात आता तुम्हारी बिरयानी खाने को.
7: अरे मियां, तौफीक चाचा को कुछ भी याद नहीं, तब आप भूल गए बिरयानी भी.
8: एक काम करते हैं, इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं.
9: हेलो हेलो, तौफीक चचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियां. क्यों चचा?
10: सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ.
11: एक मिनट रुको, एक बात शायद आप भूल गए बेटा, ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ बांट.

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतार कदीम डाइसो जापान यू नेम इट वी हैव इट गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम
2: Varadma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Salva Road.
3: And Grand Mall Hypermarket.
4: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village. Or shop online ajwa.qa.
5: Restaurant partner, Kozhikode Star Restaurant.
6: Shadi ki biryani ki toh baat hi kuch aur hai. Ab wahi authentic shadi स्टाइल बिरयानी का एक्सपीरियंस लीजिए एट कोझीकोड स्टार रेस्टोरेंट अब बिन उमरान में।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार.

0: Radio Olive 106.3 FM.
1: Radio Olive Eid Majlis. Eid Majlis.
2: आप सभी को एक सुपर डुपर गुड मॉर्निंग और एक और बार ईद मुबारक। और भाई कल ईद के दिन बहुत सारे सेलिब्रेशन हुए, बहुत सारे लोगों ने जो है एंजॉय किया, स्टोरीज डाले, हमें टैग किया, उसके साथ साथ मेरे फ्रेंड्स जो हैं यहाँ पे थोड़े लोग और हम कलीग जो हैं हम सब ने सेलिब्रेट किया। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा दिन था, बिरयानी से भर दिया खुद को, सच बताऊँ तो मतलब काफ़ी दिल से खाया, पेट भर के खाया, मन भर के खाया, इन्जॉय किया, ईदी मिली तो काफ़ी अच्छा लगा। आपका ईद कैसा गया ज़रा मुझे बताइए। आप 3311063 पर मैसेज करके आप अपने सेलिब्रेशन के फोटोज मुझे भेज सकते हैं और बता सकते हैं अपने सेलिब्रेशन के बारे में। तो तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी मैसेज कीजिए मुझे और बताइए कैसा रहा आपका ईद सेलिब्रेशन। और यही बोलते हुए हम भी जरा किक स्टार्ट करते हैं आज के ईद मजलिस को। स्टे ट्यून्ड, यह है रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव जियो बिंदास।

0: Hello, listeners of Olive Suno Radio Network. I am Homad Ashraf, director of Brilliant Qatar. On behalf of Team Brilliant, wishing you a blessed Eid al-Fitr filled with peace, love, and prosperity.
1: Happiness baantoge, tab hi to badhegi.
2: Kyunki happiness is contagious. Radio Olive, your happiness frequency. Jio Bindas.
3: Eid Mubarak. Yes, Anil Kapoor and Malabar Gold and Diamonds wishing all of you a happy and blessed Eid.
4: Shackman ki power packed range, heavy trucks, tippers, trailers aur boom trucks. Damdar performance aur bharosa. Sirf Carmel ke saath. Visit Carmel Group now.
5: हेलो नमस्कार मम्मा मिया मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ओलिव पर ईद मुबारक जियो बिंदास
6: रेडियो ओलिव ईद मजलिस
7: शाइन स्मार्टर दिस सीजन विद मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स एक्सचेंज योर ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइन सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके
8: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: रेडियो ईद मजलिस।
1: आप सभी का विजय और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो ईद मजलिस ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई यहाँ पे जो है मेरे पास थोड़े मैसेजेस आए हैं, मुझे फोटो भेजा है असलम भाई ने, मुझे फोटो भेजा है। उसके साथ साथ मुझे MSY करके अकाउंट से मैसेज आया है, उन्होंने मुझे एक फोटो भेजा है। उसके साथ साथ मुझे और एक और मैसेज आया है Z, एक बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर कुछ लिखा हुआ है उन्होंने मैसेज किया है। उनका नाम है जायद भाई ने मुझे मैसेज किया है। इन सब ने अपने ईद सेलिब्रेशंस के फोटोज भेजे हैं, जो दावत इन्होंने सजाई थी उसके फोटोज मुझे भेजे हैं। थैंक यू सो मच। और एक और मैसेज मुझे आया है और जवाहर का मैसेज आया है। जवाहर ने लिखा है कि हेलो सुदेव, ईद मुबारक, उम्मीद करती हूँ कि आपका ईद जो है काफ़ी अच्छा गया होगा और हमने यहाँ पे कल बहुत ही मज़े किए, दावत भी बहुत अच्छी थी और फोटो भी भेजा अपने फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच। काफ़ी डिलीशियस जो है ये दावत मुझे देख के लगी, थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ मुझे एक और मैसेज आया है और अब्दुल्ला भाई ने मैसेज किया है, उन्होंने लिखा है हेलो सुदेव, ईद मुबारक, ये रहा हमारा सेलिब्रेशन करके। इन्होंने दो तीन फोटोज डाले हैं, एक तो इनके घर में जो सेलिब्रेशन इन्होंने किया, उसके साथ साथ डिफरेंट इवेंट्स में जहाँ पे वो गए उनके वहाँ की फोटोज भी डाले हैं। कतारा गए थे कल, ये उसके फोटोज भी मुझे भेजे हैं। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही अपना प्यार बांटते रहिए, फोटोज भेजते रहिए 3311063 पर। और यही बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
3: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
3: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
4: द बिग बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालुकास। यस, जोयालुकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। ऑफर वैलिड अंटिल 13th जून 2026 ओनली। हरी
5: जोयालुकास, वर्ल्ड्स फेवरेट ज्वेलर।
6: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ।
7: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच्ड डिटेलिंग का फिनिश।
6: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
7: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और ये स्पेक्टेक्युलर फेस्टिवल ऑफर।
8: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
9: Naseem Healthcare wishes you Eid Mubarak.
10: Radio Olive Eid Majlis.
11: Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
12: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: Radio Olive Eid Majlis.
1: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे आपके पास मौका है ओल्ड दोहा पोर्ट में जाके एक ट्रेडिशनल मैरिटाइम बैंड को एंजॉय करने का। तो करना क्या है आपको, सीधा जाना है ओल्ड दोहा पोर्ट में। आप 27 से लेके 30 तक, यानी कि कल ऑलरेडी एक दिन हो चुका है, आज भी है, कल भी है, परसों भी है, तो शाम 5:20 से लेके रात 10 बजे तक जो है ये इवेंट चलेगा। आप जा सकते हैं वहां पे ओल्ड दोहा पोर्ट में और चेकआउट कर सकते हैं इस ट्रेडिशनल मैरिटाइम बैंड और लाइव परफॉर्मेंसेस को। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और गाना प्ले करते हुए कहते हैं जियो बिंदास।

0: Hot and Cool wishes you Eid Mubarak.
1: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद ब्रिलियंट कतार. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
3: The big. Biggest jewellery festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewellery. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
4: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
5: ईद की महकती शाम, चांद की रोशनी और खुशियों का एक हसीन जहान.
6: इस ईद हर लम्हा होगा और भी खास एट अबू सिद्रा मॉल.
5: आइए सेलिब्रेट करिए नयाली ईद 27th, 28th और 29th मई को शाम 6 बजे से 10 बजे तक, जहां इंतजार कर रहा है स्पेक्टैक्युलर अलादीन शो, लाइव एंटरटेनमेंट, एक्साइटिंग किड्स एक्टिविटीज और ढेर सारी ईद सरप्राइजेस. तो इस ईद फैमिली के साथ बनाए यादें सिर्फ अबू सिद्रा मॉल में. योर Ultimate Eid Destination.
7: Hi, I'm Kiara Advani and you're listening to me on Olive 106.3 FM and wishing you all Eid Mubarak.
5: Milan ka Tyohar, Pyar ka Paigam. Aap sabhi ko Radio Olive ki taraf se Eid Mubarak.
8: Eid Mubarak.
9: Sunte rahiye Radio Olive 106.3 FM.
10: Radio Olive Eid Majlis.
11: Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
12: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: ईद मजलिस, ईद मजलिस।
1: भाई ईद के इस जश्न के मौके पर एक बहुत ही बढ़िया चीज आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे, आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज बताना चाहेंगे। अगर आपके पास पुराने गोल्ड ज्वेलरी हैं तो आप उन्हें एक्सचेंज कर सकते हैं, जो आपने कहीं से भी खरीदी हो, सीधा मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में जाके, जहाँ पे सिर्फ मेकिंग चार्ज पे करके आप न्यू डैजलिंग डिजाइन जो है ले सकते हैं। और एक और ग्रेट न्यूज है, इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन जो है आ चुके हैं, तो हम जो है अब यहाँ पे कतर में गोल्ड प्राइसेस में 15% तक सेव कर सकते हैं। तो जानी इंतजार किस बात का है, सीधा अपने नजदीकी मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम विजिट कीजिए और लुत्फ उठाइए इस ऑफर का। और यही बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं, गाना प्ले करते हुए कहते हैं जियो बिंदास।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
4: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार. लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ.
5: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनेस.
4: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप.
5: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और ये स्पेक्टेक्युलर फेस्टिवल ऑफर.
6: इब्राहिम भाई, ईद मुबारक.
7: ईद मुबारक.
8: तौफीक चाचा, ईद मुबारक.
9: आप
8: चाचा? मैं इब्राहिम.
9: हर जुमेरात आता
8: तुम्हारी बिरयानी खाने को.
9: अरे मियां, तौफीक चाचा को कुछ भी याद नहीं, तब आप भूल गए बिरयानी भी.
10: एक काम करते हैं, इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं.
11: हेलो हेलो, तौफीक चचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियां.
12: क्यों चचा?
13: चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ.
14: एक मिनट रुको, एक बात शायद आप भूल गए बेटा, ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ बांट.

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है। गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतार कदीम, डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट। गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक, बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम।
2: Varadma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Salva Road.
3: And Grand Mall Hypermarket.
4: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village or shop online ajwa.qa.
5: Restaurant partner, Kozhikode Star Restaurant.
6: Shadi ki biryani ki toh baat hi kuch aur hai. Ab wahi authentic shadi स्टाइल बिरयानी का एक्सपीरियंस लीजिए एट कोझिकोड स्टार रेस्टोरेंट, अब बिन उमरान में।
7: ग्रो योर ब्रांड अक्रॉस कतर्स की ऑडियंसेस, कनेक्ट विद हिंदी लिसनर्स ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम, मलयालम ऑडियंसेस ऑन रेडियो सुनो 91.7 एफएम एंड अरबिक लिसनर्स ऑन तत्कार 107.4 एफएम। ऑन एयर विजिबिलिटी सपोर्टेड बाय परफॉर्मेंस ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स, सिंपल इफेक्टिव इंटीग्रेटेड। कॉल 3009-1063 और 3082-1063.
8: Hi all, this is Sippy Jose from Blasters Sports Center, wishing the whole Olive Suno Radio Network family a happy and cheerful Eid Mubarak. Thank you.
9: Radio Olive Eid Majlis.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव. और यहाँ एक बहुत ही प्यारी बात जो है मौसम के बारे में हम बताना चाहेंगे. देखिए, आज का जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो जाएगा 43 डिग्री सेल्सियस तक और लोवेस्ट टेम्परेचर जाएगा 32 डिग्री सेल्सियस तक. देखिए, गर्मी जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो मैं यही आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अगर बाहर निकलते हैं तो अगर गाड़ी जो है हो सके तो शेड में पार्क करें, या फिर आप थोड़े एक्सेसरीज ले लें जिससे जो है आप अपने विंडशील्ड को कवर कर सकते हैं. उसके साथ साथ अपने स्टीयरिंग व्हील को कवर करने वाला जो एक्सेसरी है वो कवर है वो भी आप ले लें, वो भी बहुत काम आता है. और पानी हमेशा रखें अपने साथ में, हाइड्रेटेड रहिए या फिर इन्फ्यूज्ड वाटर पिए, मगर पानी पीना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है. और यही बात याद दिलाते हुए हम आगे बढ़ते हैं. और थोड़ी देर में जब गानों के उस पार वापस आएंगे तो बताएंगे कि AI पे भरोसा नहीं किया जा सकता. बताता हूँ क्यों, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुआ है अभी के अभी. स्टे ट्यून्ड, यह है रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव. जियो बिंदास.

0: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस, ईद मजलिस।
1: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे मैंने थोड़ी देर पहले गानों के पहले बोला था कि भाई एआई पे भरोसा नहीं हो सकता, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला है अभी के अभी। तो हुआ ये कि थोड़ी देर पहले बैठ के मैं अपने एआई असिस्टेंट से, एआई चैटबॉट से ऐसे ही पूछ रहा था कि भाई ईद अल अदा के फेमस बॉलीवुड रिलीज कौन कौन से हैं, मूवीज के रिलीज कौन कौन से हैं, जरा मुझे बताओ, मुझे लिस्ट दो करके। उसमें भाई उसने जो लिस्ट दिया है देख के मेरी आंखें चौंधियां गई, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे थोड़ा डाउट हुआ। फिर मैंने क्या किया, मैंने जाके चेक किया, मैंने रिलीज डेट को और ईद के डेट को कंफर्म किया, तो पता चला कि ये तो पिछले ईद के बारे में ऐसे बात हो रही है, ईद उल फितर में जो मूवीज रिलीज हुई है उनको ईद उल अदा का बता रहा है। तो मैंने कॉल आउट किया, मैंने बोला ये तो गलत बता रहे हो आप, मुझे गलत सूचना क्यों दे रहे हो, गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हो। तो ये कहता है माफ कर दो मुझे, मैं मानता हूं मेरे से गलती हो गई, ये लो सही वाला लिस्ट ले लो करके। मैं बोला ठीक है। मैं फिर से सोचा कि थोड़ा विश्वास कर सकते हैं भाई, बेनिफिट ऑफ डाउट तो देना पड़ता है, इंसान को दे सकते हैं तो एआई को क्यों नहीं दे सकते। फिर से मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, फिर से उसने मूवी की लिस्ट निकाली तो अलग ही गलत। नमस्ते लंदन उसने बोला ईद अल अदा में रिलीज हुई है। तो मैंने चेक किया फिर से, क्योंकि चेक करने की आदत बन गई अपने ही, मैंने चेक किया तो मैंने बोला भाई दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है इस मूवी का ईद से। फिर मैंने क्या किया, फिर बोला कि भाई तुम फिर गलत बता रहे हो। तो फाइनली उन्होंने मुझे बोला कि यू आर कंप्लीटली राइट एंड आई अप्रिशिएट यू कॉलिंग दैट आउट, माई टाइम लाइन गॉट टैंगल्ड अप एंड लेट्स स्क्रब दोज कंप्लीटली फ्रॉम द बोर्ड एंड लेट्स गेट द फैक्ट स्ट्रेट। इफ यू आर टॉकिंग स्ट्रिक्टली अबाउट द ईद अल अदा रिलीजेस ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स, द स्ट्रैटेजी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। और उन्होंने बोला है कि ईद अल अदा के टाइम पे यूजुअली बॉलीवुड रिलीजेस नहीं होते हैं, अगर हुए हैं तो वो कोइंसिडेंटली आए हैं करके। तो यही बात अगर ये पहले बता देता तो मैं बोलता ना कि ठीक है कोई बात नहीं मान सकते हैं, बट इसने क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन कर दिया अपने मेरे से, अब क्या कर सकते हैं। देखिए एआई से फायदा बहुत होता है, जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं, मगर उसे फैक्ट चेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई कैन हैलुसिनेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर आप एआई यूज करते हैं तो हमेशा फैक्ट चेक करना मत भूलिएगा। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
2: ईद मुबारक। यस, अनिल कपूर एंड मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स विशिंग ऑल ऑफ यू अ हैप्पी एंड ब्लेस्ड ईद।
3: गो क्रिस्पी विशेस यू ईद मुबारक। रेडियो ऑलिव ईद मजलिस।
4: Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
5: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव. और भाई बहुत ही बढ़िया जो है एक अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा, खबर देना चाहूंगा एक इवेंट के बारे में, तोरबा मार्केट ऑन द ब्रिज. जी हाँ, यहाँ पे आप कम्युनिटी वाइब्स जो है एंजॉय कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं. जब तोरबा मार्केट ऑन द ब्रिज जो है ये 3 दिन तक खुलने वाला है, जहाँ पे आप हैंडीक्राफ्ट को देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फ्रेश प्रोड्यूस को देख सकते हैं, और उसके साथ साथ काफ़ी स्टनिंग व्यू है जो पर्ल आइलैंड का, उसे भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं. तो ये जो इवेंट है तोरबा मार्केट ऑन द ब्रिज, ये 28th यानी कि आज, कल और परसों होने वाला है. और कनत कॉटियर में, पर्ल आइलैंड में जो है ये ब्रिज लगने वाला है, ये इवेंट होने वाला है. फ्री एंट्री है, शाम 5 बजे से लेके रात 9 बजे तक जो है ये इवेंट होने वाला है. और यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास.

0: Ansar Tea wishes you Eid Mubarak.
1: Happiness free में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि happiness is contagious. Radio Olive, your happiness frequency. Jio Bindas.
2: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: हाय, मैं हूँ श्रुति पाठक और कतार में रहने वाले सभी लोगों को ईद मुबारक. ईद मुबारक. 106.3 FM रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास. जियो बिंदास.
3: Celebrate the joy of community and connection this Eid with Radio Olive 106.3 FM.
0: Radio Olive Eid Majlis. Eid Majlis.
5: Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
3: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: Radio Olive Eve Majlis. Eve Majlis.
1: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे जो है एक चीज मैं बताना चाहूंगा। देखिए, लंबी छुट्टियां मिली है इस बार और बहुत सारे लोगों ने बहुत प्लान्स बनाए हैं। कुछ लोग स्टेकेशन के लिए गए हैं, कुछ लोग बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोग यहीं पर हैं, कुछ लोगों ने मूवी मैराथन का प्लान बना रखा है, कुछ लोगों ने सीरीज मैराथन का प्लान बना रखा है। यहां पे मैं आपको बता सकता हूं कि आप बुक मैराथन भी कर सकते हो, वैसे रीडिंग मैराथन भी कर सकते हो, बुक्स उठा सकते हो, रीड कर सकते हो, जो आपके क्रिएट एक्टिविटी के लिए, आपकी इमेजिनेशन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। फिक्शन बुक्स आप रीड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको नॉन फिक्शन पसंद है वो भी आप रीड कर सकते हैं। मगर कोशिश कीजिए कि इस वक्त आप किताबों के साथ भी थोड़ा वक्त जो है स्पेंड करें, क्योंकि देखिए स्क्रीन के साथ हमारा रिश्ता जो है बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, उसमें से निकलना मुश्किल हो चुका है। तो धीरे धीरे धीरे किताबों के साथ का रिश्ता एस्टैब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपने सोच विचार में हमें एक रिफाइनमेंट लेके आना है, या फिर नए नए तरीके से सोचने का एक सिस्टम अगर हमें अपने दिमाग में चाहिए, तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक किताब जो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, जो आप रीड कर सकते हैं, जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब मेरे दिल को छू गई थी ये स्टोरी जो है, बहुत बढ़िया, मतलब मैं बहुत खुश हो गया था इस स्टोरी से। तो इस बुक का नाम है हाउ टू किल अ मॉकिंग बर्ड करके, आप जरूर इसे चेकआउट कीजिएगा। बहुत ही क्लासिक एक बुक है, जिन लोगों ने पढ़ा उन्हें पता होगा, तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज डू चेक इट आउट। बहुत अच्छी किताब है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: की एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: This hour is brought to you by
4: Homes R Us. We complete your home.
5: Qatar General Insurance and Reinsurance Company wishes you Eid Mubarak.
6: Radio Olive Eid Majlis.

0: का त्योहार प्यार का पैगाम आप सभी को रेडियो ऑलिव की तरफ से ईद मुबारक
1: सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 FM

आप सभी का वैसे एक और बार स्वागत है। एक और इवेंट के बारे में बताने के लिए मैं आ चुका हूँ। मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव और आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव। और यहाँ पे गल्फ मॉल के इवेंट के बारे में बताना चाहूंगा, जहाँ पे आप बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने बच्चों के साथ फन कर सकते हैं, बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। स्लाइम DIY, पेंटिंग, मास्क मेकिंग, बलून ट्विस्टिंग, फेस पेंटिंग है ना, और भी बहुत सारे एक्टिविटीज गल्फ मॉल में 27th यानी कि कल से शुरू हो चुका है, अब 30th मई तक जाने वाला है। और इसकी जो एंट्री है टाइमिंग है 2 PM टू 10 PM और एंट्री फ्री है। तो ज़रूर आप जाइए अपने बच्चों के साथ, चेकआउट कीजिए इस इवेंट को और फन कीजिए अपने बच्चों के साथ। और यही बोलते हुए हम भी ज़रा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: डोमिनोज विशेस यू हैप्पी ईद।
1: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद ब्रिलियंट कतार। 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
3: Eid Mubarak! Eid Mubarak! Eid Mubarak! Here's Anil Kapoor and Malabar Gold and Diamonds wishing all of you a happy and blessed Eid.
4: Hi, this is A.R. Rahman. A.R. Rahman.
5: Eid Mubarak to my brothers and sisters around the world.
4: Radio Olive. Jio Bindas. Jio Bindas.
0: Radio Olive Eid Majlis.

0: ईद मजलिस।
1: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ओलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे ईद अल अदा सेलिब्रेशन जोरों शोरों से जो है चल रहा है। डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स जो है चल रहे हैं। लयाली ईद के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जी हाँ, ये हो रहा है एट्रियम 1 अबू सिद्रा मॉल में। शाम 6 बजे से लेके 10 बजे तक एंट्री फ्री है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस आपके लिए जो है इंतजार कर रहा है, जहाँ पे एक्साइटमेंट है, एंटरटेनमेंट है और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंसेस जो है लयाली ईद में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बबल शोज है, किड्स गेम्स है, साइंस शोज हैं, लाइव मैस्कट्स हैं और एक स्पेशल अलादीन थिएटर शो, वो भी फ्री। तो इंतजार किस बात का है, आज जा सकते हैं आप, चिल कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ऑलरेडी जो है ये इवेंट शुरू हो चुका है, कल से शुरू हो चुका है, आज भी है और कल भी है। 27 से लेकर 29 तक जो है इसका ड्यूरेशन है। तो आज आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया। और यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: The big, big, big, biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: Ibrahim bhai, Eid Mubarak.
4: Eid Mubarak.
5: Taufik chacha, Eid Mubarak.
6: आप
5: चचा, मैं इब्राहिम हर जुम्मे रात आता तुम्हारी बिरयानी खाने को।
6: अरे मियां, तौफीक चाचा को कुछ भी याद नहीं, तब आप भूल गए बिरयानी भी।
7: एक काम करते हैं, इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं।
8: ए, हलो हलो, तौफीक चचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियां। क्यों चचा?
9: सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ।
10: एक मिनट रुको, एक बात शायद आप भूल गए बेटा, ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ बांटी।

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है। गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतारकदीव, डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट। गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक, बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम।
2: Varadma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Selva Road.
3: And Grand Mall Hypermarket.
4: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village or shop online ajwa.qa.
5: Restaurant partner, Kozhikode Star Restaurant.
6: Shadi ki biryani ki to baat hi kuch aur hai. Ab wahi authentic shadi स्टाइल बिरयानी का एक्सपीरियंस लीजिए एट कोझिकोड स्टार रेस्टोरेंट, अब बिन उमरान में।
7: ग्रो योर ब्रांड अक्रॉस कतर्स की ऑडियंसेस, कनेक्ट विद हिंदी लिसनर्स ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम, मलयालम ऑडियंसेस ऑन रेडियो सुनो 91.7 एफएम एंड अरबिक लिसनर्स ऑन तत्कार 107.4 एफएम। ऑन एयर विजिबिलिटी सपोर्टेड बाय परफॉर्मेंस ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स, सिंपल इफेक्टिव इंटीग्रेटेड। कॉल 3009-1063 और 3082-1063.
1: Taufeeq Travels wishes you Eid Mubarak. Radio Olive Eid Majlis.

0: 106.3 FM. ये है Radio Olive.
1: Radio Olive Eve Majlis. Eve Majlis.
2: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है. आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक सीरीज रिकमेंडेशन के साथ मैं आया हूं. और मैंने जो है एक बार बताया था आपको सपने वर्सेस एवरीवन वन के बारे में, सीजन वन के बारे में. सीजन टू भी निकल चुका है और अभी देखिए लंबी छुट्टी है तो आराम से जो है आप सीरीज मैराथन कर सकते हो, बिंज वॉचिंग कर सकते हो. बट जरूरी नहीं है बिंज वॉच करना है, बट आप आराम से टाइम लेके इत्मीनान के साथ इन दोनों सीजन को खत्म कर सकते हो. सपने वर्सेस एवरीवन जो है आप चेकआउट कर सकते हैं, Amazon Prime में है वो. और बहुत ही बढ़िया एक सीरीज है, उसकी राइटिंग, उसकी मैं जो एक्टिंग हुई है उस पूरे सीरीज में बहुत ही बढ़िया है. और जिस तरीके से एलिमेंट्स को यूज़ किया है, म्यूजिक को यूज़ किया है, पोइट्री को यूज़ किया है, रैप को यूज़ किया है, हिप हॉप को यूज़ किया है, काफ़ी बढ़िया है. अम्बरीश वर्मा, यू ब्यूटी मैन, सलाम ठोकता हूँ मैं इस बंदे को भाई, क्या तगड़ा बंदा है. इसने ही लिखा है, इसी ने एक्ट किया है इसमें. और भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स जो हैं आपको इसमें देखने को मिलेंगे, एक्टिंग परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी आपको देखने को मिलेगी. और यही बात बताते हुए, सजेस्ट करते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास.

0: रेडियो ईद मजलिस, ईद मजलिस।
1: तो हम भी जरा टाटा बाबा करके निकलते हैं यार, जाने का वक्त आ चुका है और 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में कशिश आ जाएगी आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, गाने सुनाने के लिए, गुनगुनाने के लिए, वक्त बिताने के लिए। तो खुली बाहों से कशिश का स्वागत कीजिएगा, जितना प्यार मुझे दिया है उतना और उससे ज्यादा प्यार कशिश को दीजिएगा। और जाते जाते जाते हम यही याद दिलाना चाहेंगे कि अपना ख्याल रखिए, अपने खास लोगों का ख्याल रखिए और हमें जरा दुआओं में याद रखिए। तो फिर मिलेंगे अब संडे सुबह 6 बजे भाई, तब तक के लिए एंजॉय करिए, बहुत फन करिएगा और साथ ही साथ रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को नहीं फॉलो किए तो फॉलो करना मत भूलिएगा। अपने फीडबैक्स शेयर कर दीजिए, बताइए और क्या क्या आप हमारी साइड से चाहते हैं, कंटेंट में क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट करते हैं, बेझिझक आप बता सकते हैं हमें। और यही बात करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
2: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
4: स्काई जी विशेस यू ईद मुबारक। रेडियो ऑलिव ईद मजलिस।

0: 106.3 FM, ये है Radio Olive.
1: खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें एक फेस्टिवल के अगले दिन जो है घर पे आराम करने का मौका मिलता है.
2: Radio Olive ईद मजलिस. ईद मजलिस.
1: वेलकम जी, कैसे हैं आप लोग? आप सबको ईद का अगला दिन बहुत बहुत बहुत बहुत मुबारक हो. 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूं आपकी कशिश, और ईद मजलिस जो है हम आपके लिए लेकर आ गए जहां पर हमारा जो है ईद वाला वाइब जो है वो खत्म नहीं हो पा रहा है. खत्म कैसे होगा, अभी फ्रिज में रखी हुई बिरयानी खत्म नहीं हो पाई है. सो कल क्या कुछ खास किया मैंने, कल किस तरीके से अपनी ईद जो है वो सेलिब्रेट करी उस पर बात करने वाली हूँ. आप लोगों ने किस तरीके से सेलिब्रेट करी उस पर बात करने वाली हूँ. सो आपको बस स्टे ट्यून रहना है मेरे साथ यहीं पर, और अमेजिंग वाले गाने जो है वो एंजॉय करते रहने हैं. This is Eid Majlis on 106.3 Radio Olive, और मैं हूँ आपकी कशिश. अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट पर, इन्हें एंजॉय करते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास.

0: wishes you Eid Mubarak.
1: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
3: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर विद डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके. और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर. विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.
4: हाय, मैं हूं मनन शाह और कतर के सभी रहने वालों को ईद मुबारक. 106.3 FM रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास.
5: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर विद डैजलिंग न्यू डिजाइन्स सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके. और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर. Visit Malabar Golden Diamonds today.
2: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif, Alkhol.
3: Socho, agar savings se aap ban jao millionaire, commercial bank ke save and win campaign mein bhaag lijiye.
4: Har 10,000 Katri रियल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलीनियर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
5: मर्ज़ा हाइपरमार्केट विशेस यू ईद मुबारक. Radio Olive Eid Majlis.

0: देखिए मीठी वाली ईद पे तो समझ आता है बराबरी से मजे किए जा सकते हैं, लेकिन ये वाली जो ईद है ना ईद उल अधा जो है इसमें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है वेजिटेरियंस के लिए।
1: रेडियो ईद मजलिस,
0: वेलकम बैक 106.3 रेडियो पर। मैं हूँ आपकी कशिश और ईद के अगले दिन पर मतलब ईद की पूरी वाइब लेकर मैं आ चुकी हूँ। अब देखिए बीइंग अ सेमी वेजिटेरियन मैं जो है अचानक से बहुत सारा नॉनवेज नहीं खा सकती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मैं खा सकती हूँ, लेकिन अगर मैं कहा जाए कि मैं वेजिटेरियन हूँ तो इसमें कुछ गलत बात नहीं होगी। अब ईद उल अधा में जहाँ पर नॉनवेज खाने की बहार आई हुई होती है, सब नॉनवेज खाना इंजॉय कर रहे होते हैं, वहाँ पर अगर आप एक वेजिटेरियन हो तो आपको ना काफ़ी ट्रोल भी होना पड़ जाता है एंड कई बार तो मैगी पर गुजारा करना पड़ जाता है। इंडिया में भी मेरे साथ यही होता था, मेरे घर पे सब नॉनवेज खा रहे होते थे एंड मैं जो है वो वेज खाने के साथ अटक जाती थी और वेज खाना भी मेरे लिए स्पेशली बनाया नहीं जाता था, मुझे मैगी पे गुजारा करना पड़ता था या बिरयानी में से चावल चावल छाट के खाने पड़ते थे। उसी के बाद आई हैव डिसाइडेड कि यार थोड़ा थोड़ा नॉनवेज खाना शुरू करना पड़ेगा, तो अब थोड़ा बहुत मैं खा जाती हूँ लेकिन इंजॉय किए जैसा नहीं खा पाती हूँ। सो कल का दिन थोड़ा सा टफ रहा मेरे लिए खाने के प्रस्पेक्टिव पे, पर जिन लोगों को नॉनवेज बहुत ज़्यादा पसंद है उन लोगों के लिए तो मतलब एक बहुत ही बढ़िया वाली चीज़ हो गई थी। सो अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, इन गानों को आप इंजॉय कीजिए। बाकी और क्या क्या किया मैंने ईद पर और आपने क्या क्या किया ईद पर ये मैं जानूंगी पहचानूंगी। फिलहाल आप अमेजिंग वाले गाने इंजॉय करो और कहते रहो जियो बिंदास।

0: Fortis Sport wishes you Eid Mubarak.
1: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद ब्रिलियंट कतार. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
3: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
4: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
5: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
6: Hi, this is Kailash Ther. Radio Olive के सभी सुनने वालों को ईद मुबारक. Happy Eid to all.
7: Happy Eid to all.
8: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. और वक्त हो गया है दोहर की अजान का.

0: किस्मत खराब होना किसे कहते हैं? अगर आप ये समझना चाहते हैं तो आप मेरी किस्मत से अंदाजा लगा सकते हैं।
1: रेडियो ईद मजलिस,
0: वेलकम बैक जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कशिश और ईद मजलिस आपके लिए लेकर आ गई हूँ, जहाँ पे ईद के अगले दिन हम ये जान रहे हैं कि किस तरीके से मैंने ईद सेलिब्रेट करी, आपने ईद सेलिब्रेट करी। सो मैंने ना एकदम सज धज के फैसला किया कि यहाँ से ऑफिस से निकलने के बाद मैं जाऊँगी कटारा, वहाँ पे 4 बजे से सारी फेस्टिविटीज जो है वो शुरू होनी थी एंड मुझे लगा कि मैं पहुँच जाऊँगी। लेकिन लेकिन लेकिन मेरी तरह सब लोग कटारा जाना चाह रहे थे एंड इस वजह से मुझे पहुँचते पहुँचते पहुँचते पहुँचते इतना टाइम हो गया कि फायरवर्क्स का टाइम हो गया एंड एकदम भागते भागते मैंने फायरवर्क्स देखे एंड रोड से लिटरली रोड पे खड़े होकर मैंने फायरवर्क्स देखे। पर एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था क्योंकि मेरी पहली ईद जो है वो है कतर में एंड एक अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग सेलिब्रेशन मैंने देखा। क्या आप भी वहां थे और क्या आपने भी

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार। लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ।
1: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
0: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
1: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और ये स्पेक्टेक्युलर फेस्टिवल ऑफर।
2: ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। यस, अनिल कपूर एंड मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स विशिंग ऑल ऑफ यू अ हैप्पी एंड ब्लेस्ड ईद।
3: एंकर मिल्क विशेस यू ईद मुबारक।
4: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस।

0: विद रेडियो ओलिव 106.3 एफएम.
1: यार बचपन में ईद सेलिब्रेट करना भी कितना आसान था. मतलब आप घर में जो है बस तैयार होते थे, बकरे के साथ जो है खेलते थे, बाकी सारी टेंशन मम्मी पापा लोगों की होती थी.
2: रेडियो ओलिव ईद मजलिस, ईद मजलिस.
1: वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑल पर. मैं हूँ आपकी कशिश. एंड अब ईद जो है ऐसा लगता है मुश्किल हो गई है. छुट्टियाँ मैनेज करना, कपड़े मैनेज करना, उसके बाद से मतलब फिर क्या क्या ईद पे ध्यान रखना है, नमाज के लिए कितने बजे उठना है, इन सब पे खुद ध्यान देना पड़ता है. एंड स्पेशली जब आप घर से दूर हों तो और ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है. मतलब मैं रात भर सो ही नहीं इस टेंशन में कि मुझे सुबह सुबह ईद की नमाज के लिए उठना है. मम्मी थी तो कितना आसान होता था यार, वो उठा देती थी और मैं एकदम बेफिक्र होकर सोती थी कि मम्मी तो उठा ही देगी, क्योंकि मम्मी चाहती थी मैं नमाज पढ़ूं, मैं नहीं. बाकी आपकी ईद कैसी रही? अभी तक आप लोगों ने मुझे बताया नहीं है. मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आप लोग सोकर उठ ही नहीं पाए. रात में चाय वाय का दौर चला होगा, तो हो सकता है. खैर एक दो मैसेजेस आए हैं, उनके बारे में बात करेंगे थोड़ी सी देर में. तब तक आप भी अपना फोन उठाइए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए 3311063 पर. बाकी अमेजिंग गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास. दिस इज ईद मजलिस विद योर आरजे कस्टमर.

0: Burger King wishes you Eid Mubarak.
1: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर विद डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके. और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर. विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.
3: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार.

0: कट्स तक सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में, तो इस फेस्टिव सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर फेस्टिवल ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपकी नजदीकी लुलू स्टोर्स में।
1: मैं जैकी श्रॉफ, सबको ईद मुबारक और खुशियां हमेशा। रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।
2: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: Shackman की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ. विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ.
2: ईद की महकती शाम, चांद की रोशनी और खुशियों का एक हसीन जहान.
0: इस ईद हर लम्हा होगा और भी खास एट अबू सिद्रा मॉल.
2: आइए सेलिब्रेट करिए लयाली ईद 27th, 28th और 29th मई को शाम 6 बजे से 10 बजे तक, जहाँ इंतजार कर रहा है स्पेक्टेक्युलर अलादीन show, live entertainment, exciting kids activities aur dher sari Eid surprises. To is Eid family ke saath banaye yaadein sirf Abu Sidra Mall mein. Your ultimate Eid destination.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM and Arabic listeners on Tatkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Dalat Al-Bahar Barbecue wishes you Eid Mubarak. Radio Olive Eid Majlis.

0: deep togetherness and joy. Enjoy. On Radio Olive
1: 106.3 FM. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कतर में जो मैंने ऐसा देखा है जो पहले कहीं नहीं देखा था. हाँ, आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कशिश इतना कंफ्यूज क्यों साउंड करती हो यार.
2: Radio Olive Eid Majlis. Eid Majlis.
1: Welcome back 106.3 Radio Olive पर मैं हूँ आपकी कशिश एंड ईद मजलिस आपके लिए लेकर आ गई हूँ जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ईद पर क्या कुछ खास किया. अब देखो यार मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं ओवरवेल्ड हूँ क्योंकि कतर में ईद इतनी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट की जाती है ना कि मैं क्या कहूँ. कल मैंने इतनी अलग अलग टाइप से इतनी अलग अलग जगह इतने सारे इवेंट्स होते हुए देख लिए ना कि मैं खुद बहुत कंफ्यूज थी कि आखिर क्या किया जाए और क्या छोड़ा जाए. सो आज भी बहुत सारे इवेंट्स जो है वो कंटिन्यू रहेंगे, सो वहां पर जाया जाएगा. एंड मैंने एक बहुत नई चीज ऑब्जर्व करी कि लोग जो है वो फेस्टिवल्स में जा रहे हैं, वो लोग अलग अलग गैदरिंग्स में जा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं, दोस्तों के साथ लंच डिनर पे जा रहे हैं, बट क्रूज पे जा रहे हैं. लिटरली मैंने इतने सारे लोगों की पोस्ट देखी, फोटोज देखी, वीडियोस देखी, मेरा इंस्टाग्राम पूरा भरा हुआ है उन लोगों से जिन्होंने क्रूज पे अपनी ईद सेलिब्रेट करी है. यार आई एम वेरी जेलस. सो अगर आप भी सेलिब्रेट कर रहे हो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ क्रूज पर कोई भी ओकेशन, तो प्लीज मुझे इन्वाइट करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज मेरा सपना है कि एक बार मतलब एकदम समुंदर के बीच में जाकर जो है मैं खाना वाना खाऊं या सेलिब्रेट करूं. और आपने किस तरीके से अपनी ईद को सेलिब्रेट किया ये बताइए मुझे. बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी मैसेज आया हुआ है लेकिन मैं वेट कर रही हूँ कि आप पर्सनली सिर्फ आप मुझे मैसेज कर दें कि आपने किस तरीके से ईद सेलिब्रेट करी है. सो 3311063 इज माई नंबर, जल्दी जाइए वहां पे मैसेज कीजिए आपने ईद किस तरीके से सेलिब्रेट की और आज कल परसों का क्या क्या प्लान बना रखा है आपने. बाकी अमेजिंग गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, उन्हें एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए ओबिंदास.

0: all the Olive Radio listener. This is Ramesh Bulchandani, General Manager of Unzaras, Daiso, Carter and Oshkosh in Qatar. Wishing you blessed Eid, Eid Mubarak.
1: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद ब्रिलियंट कतार. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvatra. For more details, call 500-56123.
3: Eid Mubarak! Eid Mubarak! Eid Mubarak! Here's Anil Kapoor and Malabar Gold and Diamonds wishing all of you a happy and blessed Eid.
4: Hello everyone, this is Sana Khan. Wishing you all Eid Mubarak. You're listening to Radio Olive 106.3, Jio Bindas.
5: Radio Olive, Eid Majlis.

0: का त्योहार प्यार का पैगाम आप सभी को रेडियो ऑलिव की तरफ से ईद मुबारक
1: ईद मुबारक
2: सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 FM.

0: देखिए फैमिली वालों के साथ ना ईद का कैलकुलेशन थोड़ा सा अब बिगड़ चुका है, क्योंकि यहाँ पर यानी कतर में एक दिन पहले हमने ईद सेलिब्रेट करी थी एंड आज जो है वो इंडिया में ईद सेलिब्रेट की जा रही है।
1: रेडियो ईद मजलिस, ईद मजलिस।
0: सो कल मैं एकदम सज धज के तैयार होकर आई थी, जैसे कि हमने बात भी की थी कि लाल दुपट्टा, गोल्डन झुमके, जूती, ये सब मैंने पहना हुआ था। और आज मैं थोड़ा कैजुअल कपड़ों में आई हूँ। तो जब मैंने वीडियो कॉल किया अपनी मॉम डैड को, दादी दादा को कि ईद मुबारक कह दूँ उन्हें, तो उन्होंने कहा अरे तुम तो तैयार ही नहीं हुई हो। अरे आज नहीं है हमारे ईद, लेकिन फिर भी ईद की वाइब है इसलिए कुर्ती वुर्ती पहन कर आई हूँ। सो इसीलिए थोड़ा सा मैनेजेबल हो गया, लेकिन अब बाकी रिश्तेदारों को जब कॉल करूंगी ना तो ये ध्यान रखूंगी कि थोड़ा और मेकअप कर लूं या थोड़ा और ड्रेस्ड अप लगूं। बाकी ये कन्फ्यूजन आपको होता है या नहीं होता है, आप जहां से आए हैं, जिस कंट्री से आप आए हैं, क्योंकि वहां पर ईद का टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे हो जाता होगा, सो बताइए हमें 3311063 पर कॉल करके, एक्चुअली कॉल करके नहीं, व्हाट्सएप करके या ऑडियो नोट भी आप भेज सकते हैं। फिलहाल एक अमेजिंग आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जी उपिंदा।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
4: Sky Media wishes you Eid Mubarak.
5: Radio Olive Eid Majlis.

0: togetherness and joy. Enjoy on Radio Olive 106.3 FM.
1: इस दुनिया में ना बहुत अलग-अलग टाइप के मुश्किल काम हैं, लेकिन as a girl's girl, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे tough काम है स्टोरी के लिए गाना ढूंढना.
2: Radio Olive Eid Majlis. Eid Majlis.
1: वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश एंड ईद मजलिस आपके लिए लेकर आ गए हैं. कल ईद सेलिब्रेट करी, भर भर के फोटोज ली है मैंने एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी फोटोज के साथ जस्टिस नहीं कर पाती. कई बार मेरी फोटो बहुत अच्छी आ जाती है लेकिन जब मैं उन्हें पोस्ट करने की कोशिश करती हूँ तब एक अप्रोप्रिएट गाना नहीं मिलता. मतलब एक पोस्ट तो वो हो जाती है जो मेरे मन में ऑलरेडी जब मैं तैयार हो रही थी तो बैकग्राउंड में गाना चल रहा था, सो वो गाना सबसे पहले पोस्ट हो जाता है. लेकिन उसके बाद की फोटोज के लिए सारे क्लीशे गाने आते हैं जैसे ईदगाह चांद मेरा दिलदार आज हुआ वल्ला रे वल्ला वल्ला. लेकिन सैड पार्ट ये है कि सब लोग यही गाना लगा रहे होते हैं तो कुछ अलग कैसे किया जाए. बस इसी असमंजस में मैं आज फंसी हुई हूँ क्योंकि कल की बहुत सारी फोटोज तो है मेरे पास ऑलरेडी लेकिन उन्हें पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अप्रोप्रिएट गाना नहीं मिल रहा है. अब अगर अगले आधे घंटे में मुझे अच्छा गाना नहीं मिला तो मेरा मन चला जाएगा उन फोटोज को पोस्ट करने का क्योंकि ईद का वाइब जो है वो थोड़ा थोड़ा फीका होता जाएगा ना. फिर वैसे आपकी ईद की वाइब फीकी फीकी ना होती रहे इसीलिए मैं फुल वाइब जो है वो मेंटेन करके रख रही हूँ यहाँ पे ईद मजलिस के साथ. आप ये अमेजिंग वाले गाने एंजॉय कीजिए एंड खैर अब मेरे मैसेज बॉक्स जो है वो भरता जा रहा है तो एक साथ सारे मैसेजेस पढ़ेंगे आपकी किस तरीके से ईद सेलिब्रेट करी गई है लोगों के द्वारा. फिलहाल अमेजिंग गाना एंजॉय कीजिए और मेरे साथ कहते रहिए जियो बिंदास.

0: जूरी ट्रेवल्स विशेस यू ईद मुबारक.
1: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके. और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: Your daily surprise is here. Apna hala recharge karo aur pao free data ya minutes ka surprise. Claim karo Ooredoo app par. Offer valid hai 31st May tak. Experience more with Ooredoo.
4: Hey guys, this is Varun Dhawan aur aap sun rahe mujhe on Radio Olive 106.3 FM and aap sabhi ko Qatar mein Eid Mubarak.
5: Radio Olive Eid Majlis.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
2: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
4: Ibrahim bhai, Eid Mubarak.
5: Eid Mubarak.
6: Taufik chacha, Eid Mubarak.
7: Aap?
6: Chacha, main Ibrahim. हर जुमेरात आता तुम्हारी बिरयानी खाने को।
7: अरे मियाँ, तौफीक चाचा को कुछ भी याद नहीं, तब आप भूल गए बिरयानी भी।
8: एक काम करते हैं, इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं।
9: ए, हलो हलो, तौफीक चाचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियाँ। क्यों चाचा?
10: सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ।
11: एक मिनट रुको, एक बात शायद आप भूल गए बेटा, ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ बांटे।

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है। गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्ज़री मीट्स अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतार कदीम, डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट। गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक, बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम।
2: Varadma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Selva Road.
3: And Grand Mall Hypermarket.
4: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village or shop online ajwa.qa.
5: Restaurant partner, Kozhikode Star Restaurant.
6: Shadi ki biryani ki to baat hi kuch aur hai. Ab wahi authentic shadi स्टाइल बिरयानी का एक्सपीरियंस लीजिए एट कोझिकोड स्टार रेस्टोरेंट, अब बिन उमरान में।
1: टेस्ट ऑफ मुंबई विशेस यू ईद मुबारक। रेडियो ऑलिव ईद मजलिस।

0: का त्योहार प्यार का पैगाम आप सभी को रेडियो ऑलिव की तरफ से ईद मुबारक
1: ईद मुबारक
2: सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 FM
3: जब मैं इंडिया में थी ना तो सिर्फ मैं अपनी फैमिली के साथ ईद सेलिब्रेट किया करती थी लेकिन अब जब से मैं कतर आई हूँ तब से मैं पूरे कतर के साथ ईद सेलिब्रेट कर रही हूँ
0: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस
3: वेलकम जी एक्चुअल में वेलकम बैक जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश एंड इतना सारा प्यार जो है मतलब देखकर मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं ठीक है थोड़ी ओवर एक्टिंग हो रही है लेकिन आप मेरी फीलिंग समझिए रेडियो में मैं आपको दिखा नहीं सकती कि मेरी आंखों से सच में आंसू आ रहे क्योंकि यार लोग इतना सारा प्यार दे रहे हैं और मैं प्यार की बात क्या ही करूं यार लोग मैसेज कर रहे हैं ईद मुबारक कशिश आप क्या कर रहे हो आप हमारे घर आ जाओ हमारे घर पे बिरयानी बनी है सो इतने सारे लोग जब आपको इतने प्यार से यू नो बुलाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सो बस इसी प्यार के चलते मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से थोड़ी ऐसे बातचीत की जाए एंड क्यों ना और लोगों से पूछा जाए कि उनकी ईद कैसी रही सो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी कह के मैसेज किया कि कशिश आप अकेले क्यों थे ईद पर आप कटारा जाने में आपने इतनी मेहनत क्यों करी फायरवर्क्स देखने के लिए आप जो है सिर्फ हमें कॉल करते हमें मैसेज करते हम आपको लेने आ जाते हमारे घर पे बहुत सारे लोग आए हुए थे बिरयानी खाते और शाही टुकड़ा खाते बिरयानी और शाही टुकड़ा जो है ये सुन के ही मेरी आंखों से आंसू आए क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इस मतलब लास्ट टाइम मैंने ईद उल अधा पे ही अच्छे से बिरयानी और शाही टुकड़ा खाया था कोई बात नहीं गाइस आगे बढ़ते हैं अमेजिंग वाले गाने एंजॉय करते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास

0: देखिए बेस्ट बात तो ये है कि भले ही आज ईद का दूसरा दिन है लेकिन कल ऑफिस जाने की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि कल भी छुट्टी है।
1: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस, ईद मजलिस।
0: वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश। और ईद मजलिस पे हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से मैंने ईद सेलिब्रेट करी, किस तरीके से आप सब ने ईद सेलिब्रेट करी। एंड ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ तो इन शॉर्ट ईद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर विद डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके. और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर. विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.
2: Shackman की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ. विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम
3: कल्याण सिल्क्स विशेस यू ईद मुबारक
4: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस

0: का त्योहार प्यार का पैगाम आप सभी को रेडियो ऑलिव की तरफ से ईद मुबारक
1: ईद मुबारक
2: सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम तनिषा
3: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha Aghiya ji, aapke saath Eid Majlis lekar a very good afternoon, meri jaan. Kaise hai? Celebrations continue rakhe hai na? Kaise chal rahe hai? Aur kya haal chaal hai? Ghar pe sab kaise hai? Kaise vakt bita rahe hai saath mein? What all new memories you made? Sab jana chahti ho. Dekho, aate hi itna sara unload kar diya aapki ki ye chahiye mujhe aapse. चाहिए ऑब्वियसली हक बनता है मेरा मांग सकती हूँ मैं आपसे बदले में बहुत कमाल कमाल के गाने लाइंड अप हैं और ढेर सारी बातें लेकर आ गई हूँ जी मैं पर उससे पहले शुरुआत करेंगे आपके हालचाल से 3311 1063 इज द नंबर फटाफट से आ जाओ बताओ कैसे हो और क्या चल रहा है एंड हाउ हैज द डे बीन सो फार कॉल भी कर सकते हो बाय द वे 4444 1063 पर लौट गिरा दी कुछ देर में सुनिए कमाल का गाना ऑन रेडियो ऑल ऑफ जी बिंदास मेरी जान

0: Tanisha.
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha hai aapke saath. Eid majlis chal raha hai yahan par. And dekho, hum sab apne ghar se dur aakar yahan par ek naya ghar banane ki koshish mein lage hue hain. Kuch logon ne bahut waqt bita liya hai Qatar mein aur you know ek nayi apni duniya, khud ki duniya bana li hai. So I just want to know that ki kaisa feel hota hai, you know, ek wo ghar jahan आपके पेरेंट्स ने यू नो जो हमारी पूरी फैमिली जहाँ पर रहती है, जहाँ हम बड़े हुए हैं, वहाँ के अलग अपने रिचुअल्स होंगे, ईद पर कुछ स्पेशल चीज़ें होती होंगी सबके साथ. अब जब यहाँ आपने खुद का अपना एक छोटा सा आशियाना बनाया है, यहाँ क्या ऐसा स्पेशल आप करते हैं हर ईद पर, ये जानना चाहूँगी मैं. शेयर कीजिए मुझसे, मेक मी अ पार्ट ऑफ योर सेलिब्रेशन एंड आई विल ऑल्सो फील लाइक होम ना देन. सो थोड़ा सा सेल्फिश मोटिव तो इधर भी है. आइए बताइए मुझे 3311-1063 पर मैसेज कीजिए, कॉल भी कर सकते हैं 4444-1063 पर. सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके. और अब एक और ग्रेट न्यूज.

0: with Radio Olive 106.3 FM. Tanisha.
1: तनीषा के साथ हैं आप रेडियो 106.3 FM पर और ईद मजलिस चल रहा है यहाँ पर. कुछ देर पहले मैंने पूछा था कि यू नो जब कतर में आप आए और आपने अपनी खुद की एक छोटी सी यहाँ पे दुनिया बना ली है, इज देर एनीथिंग यू नो अ न्यू रिचुअल और समथिंग यू हैव एडेड टू योर सेलिब्रेशन यू नो जो खुद आपने बनाया हो आपकी इस दुनिया का. सो आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ मैसेजेस ओवर हियर एंड कुछ लोग कह रहे हैं कि यू नो हम अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर बुलाते हैं, वी सेलिब्रेट ईद टुगेदर बिकॉज वो भी अपने घर से दूर है, हम भी, तो हम एक छोटी सी फैमिली बन गए. दैट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग यार. एंड देन आई गॉट अ रियली ब्यूटीफुल मैसेज. एहसान साहब का मैसेज है, वो कहते हैं कि यू नो ऑल दीज डिलीवरी गाइज ये हर रोज काम कर रहे होते हैं, यू नो नो मैटर व्हाट द ओकेजन इज, व्हाट द फेस्टिवल इज, एंड थ्रू आउट दिस सिचुएशन आल्सो इन्होंने हमारा इतना साथ दिया है. तो मैं कुछ एक दो सालों से आई हैव स्टार्टेड डूइंग दिस, मैं इनके साथ ईद सेलिब्रेट करता हूँ. आई ऑर्डर एंड उनके साथ बैठकर ही खाता हूँ एंड जो खुशी मिलती है दिल को, जो सुकून मिलता है किसी के लिए बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कुछ करना, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग और मतलब on another level really. And that's such a beautiful thing. Ehsaan ji, thank you so much for sharing this. If you guys have something to share, please aaiye 3311 1063 par aur sunte rahiye Radio Olive, Chhiyo Bindaas.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास। Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: Ibrahim bhai, Eid Mubarak!
2: Eid Mubarak!
3: Taufik chacha, Eid Mubarak!
4: Aap?
3: Chacha, main, Ibrahim. Har Jummerat aata, tumhari biryani khane ko.
4: Arre miyan, तौफिक चाचा को कुछ भी याद नहीं, तब आप भूल गए बिरयानी भी।
5: एक काम करते हैं, इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं।
6: ए, हलो हलो, तौफिक चाचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियां। क्यों चाचा?
7: सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ।
8: एक मिनट रुको, एक बात शायद आप भूल गए बेटा, ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ बांटी।

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेयर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतार कदीम डाइसो जापान यू नेम इट वी हैव इट गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम
2: Varadma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Selva Road.
3: And Grand Mall Hypermarket.
4: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village. Or shop online ajwa.qa.
5: Restaurant partner, Kozhikode Star Restaurant.
6: Shadi ki biryani ki to baat hi kuch aur hai. Ab wahi authentic shadi स्टाइल बिरयानी का एक्सपीरियंस लीजिए एट कोझिकोड स्टार रेस्टोरेंट अब बिन उमरान में
7: ग्रो योर ब्रांड अक्रॉस कतर्स की ऑडियंसेस कनेक्ट विद हिंदी लिसनर्स ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम मलयालम ऑडियंसेस ऑन रेडियो सुनो 91.7 एफएम एंड अरबिक लिसनर्स ऑन तत्कार 107.4 एफएम ऑन एयर विजिबिलिटी सपोर्टेड बाय परफॉर्मेंस ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स सिंपल इफेक्टिव इंटीग्रेटेड कॉल 3009-1063 और 3082-1063
1: Al Mirkab Exchange wishes you Eid Mubarak.
8: Radio Olive Eid Majlis.
9: Eid Majlis.
10: This hour is brought to you by
11: Shine Smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
12: Commercial Bank. We are saving more. Turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.
13: सड़कों से सीखा लेकिन बातें ऐसे जैसे गारा में कवाली फटेगा आड़ा तो नीचे गड़ेगा मेरे जैसा है कोई नहीं मोवाली देंगे ये सलामी चलने को जगह नहीं निकलेगी भाई की सवारी हाँ थोड़ा टाइम रुक जा खड़ी

0: अल फरदान एक्सचेंज विशेस यू ईद मुबारक.
1: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alcor.
3: हाय दोस्तों, मैं हूं अरमान मलिक और मेरी तरफ से सभी को ईद मुबारक. एंड यू आर लिसनिंग टू कतर्स नंबर वन रेडियो स्टेशन 106.3 एफएम, रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास.
4: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस. ईद मजलिस.
5: This hour is brought to you by
6: Shine Smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
7: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: तनिषा
1: ब्यूटीफुल ट्रैक तनिषा के साथ सुना आपने रेडियो 106.3 एफएम पर. ईद मजलिस चल रहा है यहाँ पर एंड कभी कभी ना मेरा इंस्टाग्राम मुझे शॉक कर देता है. कभी तो लाइन से इतना क्रिंज कंटेंट आता है और मैं देख रही होती हूँ. जी हाँ, डूम स्क्रॉल करते वक्त तो कहाँ ही आपको होश रहता है. और कभी कभी इतना मतलब अमेजिंग वाइस फुल ऑफ विजडम टाइप्स का कंटेंट आता है. उसमें से एक चीज आज मैंने पढ़ी एंड इट सेज इफ यू न्यू यू वर 100 रिजेक्शंस अवे फ्रॉम योर ड्रीम थिंक हाउ एक्साइटेड यू वुड बी एवरी टाइम समवन टोल्ड यू नो. हाउ अमेजिंग एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल पर्सपेक्टिव इट इज towards things which are not going our way. Eventually, we are getting closer to it. बड़ी सुंदर चीज़ है और मुझे ये, you know that thought process मुझे बहुत ऐसे intrigue किया and I was like, why did I not see it that way? मैं क्यों rejection को गलत ही समझ रही हूँ, negative perspective से ही देख रही हूँ. It could be positive also. Maybe मुझे इतने rejections पार करने हैं, then I will reach my dream. So, yeah, that is one way and I want all of us to look at things which are not going our way with this perspective, with this lens only. ठीक है, कोशिश तो कर ही सकते हैं यार आप और मैं दोनों. आप अकेले नहीं हो, मैं भी हूँ आपके साथ इसमें. सो द रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास.

0: Tanisha.
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha ke saath hain aap. And ek aisi motivation dene wali ho na, jo aapne kabhi socha bhi nahi hoga ki aap kabhi sunenge. So, gaur farmaiye zara. It's okay if you're broken. Kyunki kahin na kahin we all are. Hanji. Life is a journey. Kuch na kuch hota rehta hai isme. So, it's okay if you're broken. Kyunki. फटे हुए दूध से ही तो पनीर बनता है मेरी जान. ओए होए होए. एंड एज अ पनीर लवर आस्क मी क्या वैल्यू है पनीर की मेरी लाइफ में. सो यू नो यू आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर अभी थोड़ा सा बुरा टाइम चल रहा है तो उसके बेसिस पे पूरी लाइफ का यू नो एक ऐसे इमेज डिसाइड कर लेना इज नॉट ओके. मे बी अभी आप तराशे जा रहे हो, इवेंचुअली हीरा निकल के बाहर आएगा ही आएगा मेरी जान. ट्रस्ट इन योर सेल्फ इन एंड इन द प्रोसेस. जी हाँ, और मुझ में भी मैसेज कर दो इसी बात पे 331-111-063 पर. एंड स्ट्रीट यू टू रीड यू ऑल अप.

0: Magic Travels wishes you Eid Mubarak.
1: Happiness free में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि happiness is contagious. Radio Olive, your happiness frequency. Jio Bindas.
2: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
3: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर विद डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके. और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: This is Amira Dastoor, Eid Mubarak on Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.
6: Jio Bindas.
7: Radio Olive, Eid Majlis. Eid Majlis.
8: This hour is brought to you by
9: Shine Smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
4: Commercial Bank. We are saving more. Turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
3: Ibrahim bhai, Eid Mubarak.
4: Eid Mubarak.
5: Taufik chacha, Eid Mubarak.
6: Aap?
5: Chacha, main, Ibrahim.
4: Har Jumeirat aata ho,
5: tumhari biryani khane ko.
6: Arre miyan, Taufik chacha ko kuch bhi yaad nahi. Tab aap bhool gaye. Biryani bhi.
7: एक काम करते हैं, इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं.
8: ए, हलो हलो, तौफिक चचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियां.
9: क्यों चचा?
10: चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ.
11: एक मिनट रुको, बात शायद आप भूल गए बेटा. ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ बांटे.

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है। गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतारकदीव, डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट। गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक, बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम।
2: Varadma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Selva Road.
3: And Grand Mall Hypermarket.
4: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village or shop online ajwa.qa.
5: Restaurant partner, Kozhikode Star Restaurant.
6: Shadi ki biryani ki to baat hi kuch aur hai. Ab wahi authentic shadi स्टाइल बिरयानी का एक्सपीरियंस लीजिए एट कोझिकोड स्टार रेस्टोरेंट अब बिन उमरान में।
7: तौफीक ट्रैवल्स विशेस यू ईद मुबारक।
8: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस।
9: This hour is brought to you by
10: Shine Smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
11: Commercial Bank, where saving more turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: Danisha.
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Danisha hai aapke saath. Eid majlis chal raha hai yahan par and maine poocha tha na ki mujhse share kijiye ki kya kar rahe hain aap apni celebration mein, chuttiyon ka istemal kis tarah se kar rahe hain, kyunki ab to Sunday ko hi seedha office jana hai sabne. So yahan pe mujhe kuch log aise message kar rahe hain ki tum to kaam kar rahi ho, acha kaam kar rahi ho, par hum ja rahe hain apne friends ke saath staycation mein. ठीक है जी, इंजॉय कर लो, बट ध्यान रखिएगा अपना. बहुत कड़कड़ाती धूप हो रखी है, सो यू नो वेदर का ख्याल रखिएगा, बाकी मस्त इंजॉय करो. मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा ये पढ़ के, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इंजॉय कर रहे हैं, यू आर हैविंग एन अमेजिंग वीकेंड और लॉन्ग वीकेंड बेसिकली, और बढ़िया मेमोरीज बनाइए फ्रेंड्स के साथ और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, बस यही चाहिए यार. ख्याल रखा करो अपना, ठीक है? और सुनते रहो रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास.

0: कार फोर विशेस यू ईद मुबारक।
1: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ।
3: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
2: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
3: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और ये स्पेक्टेक्युलर फेस्टिवल ऑफर।
4: ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। यस, अनिल कपूर एंड मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स विशिंग ऑल ऑफ यू अ हैप्पी एंड ब्लेस्ड ईद।
5: हाय, मैं हूं मनन शाह और कतर के सभी रहने वालों को ईद मुबारक।
6: ईद मुबारक।
5: 106.3 FM रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।
6: जियो बिंदास।
0: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस।
7: ईद मजलिस।
8: This hour is brought to you by
9: Shine Smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
10: Commercial Bank, where saving more turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: Tanisha.
1: कमाल गाना ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM तनीशा के साथ हैं आप ईद मदरस चल रहा है यहाँ पर और फिलहाल वक्त हो गया मेरे जाने का मेरी जान मिलते हैं सैटरडे दोपहर 2 बजे अपना ख्याल रखिएगा हैव एन अमेजिंग वीकेंड टू योरसेल्फ और जो भी सेलिब्रेशन चल रहे हैं कंटिन्यू रखो बस अपने लिए वक्त निकालो और ये तो लंबा मिला है हमें ठीक है बहुत सारी छुट्टियाँ मिली हैं तो इसमें तो आपको अपने लिए वक्त निकालना ज़रूरी है और सुनो जो भी चीज़ प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो ना वेदर इट इज़ स्टार्टिंग एक्सरसाइजिंग जिम वगैरह या फिर एक प्रॉपर रूटीन बनाना या फिर वो जो रूम का एक कॉर्नर है उसे क्लीन करना स्टॉप कर लो इस बार ठीक है मौका है दस्तूर है मौके पर चौका मार लो और अपना ख्याल रखो और सुनते रहो रेडियो 106.3 FM जियो बिंदास मेरी जान

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: ईद की महकती शाम, चांद की रोशनी और खुशियों का एक हसीन जहान।
0: इस ईद हर लम्हा होगा और भी खास एट अबू सिद्रा मॉल।
1: आइए सेलिब्रेट करिए लयाली ईद 27th, 28th और 29th मई को शाम 6 बजे से 10 बजे तक, जहां इंतजार कर रहा है स्पेक्टेक्युलर अलादीन शो, लाइव एंटरटेनमेंट, एक्साइटिंग किड्स एक्टिविटीज और ढेर सारी ईद सरप्राइजेस। तो इस ईद फैमिली के साथ बनाए यादें सिर्फ अबू सिद्रा मॉल में, योर Ultimate Eid Destination.
2: Commercial Bank presents CB 2026 Million Riyals Dream.
1: अब सिर्फ savings नहीं, सपने grow होंगे. जीतिए पूरे 5 million riyals cash prizes.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना account balance बढ़ाइए. हर 10,000 riyals growth पर पाइए एक coupon.
1: दूसरा, अगर salary 4,000 plus है या 50% save किया है, तो आप eligible हैं.
2: तीसरा, नए customers को पहली salary या 10,000 funding पर guaranteed coupon. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
3: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
4: द बिग Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
5: Joyalukkas, world's favorite jeweler.

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: मैजिक ट्रेवल्स विशेस यू ईद मुबारक
3: रेडियो ओलिव ईद मजलिस

0: ईद मुबारक दोस्तों.
1: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस. ईद मजलिस
0: सिमरन कौर आपके साथ. ईद मजलिस का आज दूसरा दिन है. आपको पता है कि जैसे ईद आती है हमारे सारे शोज जो है वो शोज नहीं रहते हैं, वो मजलिस हो जाते हैं, वो भी ईद वाली. मैं क्या जी सोनिया की दादी की हालचाल सत श्री अकाल सिमरन कौर आपके साथ. तो बताइए कैसी जा रही है आपकी ईद की छुट्टियां, एंजॉय कर रहे हैं, फन हो रहा है नहीं हो रहा है, जो भी है बताइए आप मुझे. 3311063 पर आपके मैसेजेस का इंतजार कर रही हूँ. एंड यस ऑफकोर्स 4 घंटे जो है वो अपने होने वाले हैं. आज मैं तो ये भी नहीं बोल सकती हैप्पी वीकेंड, क्योंकि ऑलरेडी आपका वीकेंड जो है वो चल रहा है. आपको वीकेंड की फील जो है वो ट्यूजडे से ही आ रही है. सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कोड, कहते रहिए जियो बिंदास.

0: Damasco wishes you Eid Mubarak.
1: Happiness free में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि happiness is contagious. Radio Olive, your happiness frequency. Jio Bindas.
2: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ.
0: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश.
2: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप.
0: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और ये स्पेक्टेक्युलर फेस्टिवल ऑफर.
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
0: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
0: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
4: हाय दोस्तों, मैं हूं अरमान मलिक और मेरी तरफ से सभी को ईद मुबारक. एंड यू आर लिसनिंग टू कतर्स नंबर वन रेडियो स्टेशन 106.3 एफएम, रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास.
5: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: Shackman की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कारमिल के साथ. विजिट कारमिल ग्रुप नाउ.
2: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस्ड फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके. और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर. विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.
3: टावर मॉल विशेस यू ईद मुबारक.
4: Radio Olive Eid Majlis.

ईद मजलिस में सिमरन कौर को आप सुन रहे हैं। सो वेदर का है कि आज का मैक्सिमम टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस। फील्स लाइक कितना है वो तो आप अपनी गाड़ी में बैठ के डिसाइड कर लेते हो। नहीं यार सिमरन ऐसा नहीं है, इतना टेम्परेचर जो है वो हो रखा है। मिनिमम टेम्परेचर है आज का 32 डिग्री सेल्सियस। सो यस, ईद के टाइम पे मुझे पता है बहुत सारा फ्राइड, बहुत सारा मीठा खाने का मन करता है, लेकिन थोड़ा सा वेदर के हिसाब से हमको अपनी डाइट भी चेंज करनी है। ज्यादा मीठा और ज्यादा फ्राइड जो है वो अवॉइड करिएगा एंड पानी टाइम पे पीते रहिएगा। हाइड्रेट योरसेल्फ, पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। ईद मुबारक सिमरन कौर के साथ जियो बिंदास।

0: विशेस यू ईद मुबारक।
1: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
2: ईद मुबारक। यस, अनिल कपूर एंड मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स विशिंग ऑल ऑफ यू अ हैप्पी एंड ब्लेस्ड ईद।
3: सोचो, अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स। कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
5: ईद मुबारक।
6: कौफिक चाचा, ईद मुबारक।
5: आप
6: चाचा? मैं इब्राहिम। हर जुम्मे रात आता हूँ तुम्हारी बिरयानी खाने को।
5: अरे मियाँ, तौफिक चाचा को कुछ भी याद नहीं, तब आप भूल गए बिरयानी भी।
7: एक काम करते हैं, इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं।
8: ए, हलो हलो, तौफिक चचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियां। क्यों चचा?
9: चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ।
10: एक मिनट रुको, बात शायद आप भूल गए बेटा। ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ बांट।

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है। गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्ज़री मीट्स अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतार कदीम, डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट। गोल्डन फ्लेकी इरेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक, बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम।
2: Varadma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Salva Road.
3: And Grand Mall Hypermarket.
4: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village. Or shop online ajwa.qa.
5: Restaurant partner, Kozhikode Star Restaurant.
6: Shadi ki biryani ki to baat hi kuch aur hai. Ab wahi authentic shadi स्टाइल बिरयानी का एक्सपीरियंस लीजिए एट कोझिकोड स्टार रेस्टोरेंट अब बिन उमरान में।
7: ग्रो योर ब्रांड अक्रॉस कतर्स की ऑडियंसेस, कनेक्ट विद हिंदी लिसनर्स ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम, मलयालम ऑडियंसेस ऑन रेडियो सुनो 91.7 एफएम एंड अरबिक लिसनर्स ऑन तत्कार 107.4 एफएम। ऑन एयर विजिबिलिटी सपोर्टेड बाय परफॉर्मेंस ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स, सिंपल इफेक्टिव इंटीग्रेटेड। कॉल 3009-1063 और 3082-1063।
8: Hi, I'm Udit Narayan here. Udit Narayan here. और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव। आप सब लोगों को ईद मुबारक। ईद मुबारक।
9: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस।

0: जो लोग इंडिया नहीं गए हैं इस बार ईद पे,
1: रेडियो ईद मजलिस, ईद मजलिस।
0: दिन थोड़े तो लंबे लगते होंगे आपके, है ना। हम सब लोग जो है वो एक्साइटेड हो जाते हैं, ईद की छुट्टियां, ईद की छुट्टियां होंगी। जब तक अगर आपके फैमिली या फ्रेंड्स जो है वो आपके साथ ईद पे नहीं है, है ना, इस टाइम पे थोड़ा सा जो है वो छुट्टियां लंबी लगती हैं। लेकिन जिन लोगों को एकदम ऐसा सोने से बहुत ज्यादा प्यार है, अकेले रहने से बहुत ज्यादा प्यार है, उनके लिए टाइम जो है वो बहुत अच्छा है। ईद मुबारक एक बार फिर से, ईद का दूसरा दिन है। आई होप आप अपने तरीके से अपनी ईद को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप घर से दूर हैं तो कोई चक्कर नहीं है यार, हम कोशिश करते हैं आप लोगों को एंटरटेन करने की, कोशिश करते हैं कि हर शो के जरिए हम कुछ इस तरह की फ्लेवर दे सके जब आप हमें सुन रहे हैं तो आपको अकेला जो है वो बिल्कुल भी फील ना हो। अगर आप अकेले हैं तो कोई टेंशन नहीं है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 4444106 स्टूडियो के नंबर पे। ईद मुबारक भी हो जाएगा, बात भी हो जाएगी, आप मुझे वैसे मैसेज भी कर सकते हो 3311063 पर। बिरयानी हो गई होगी आज तो मज़ेदार, पूछा भी नहीं यार किसी ने। अगर आप पूछ लेते तो मैं खा नहीं पाती, लेकिन या मुझे बिरयानी राइस बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बाकी का मामला सारा हटा के बिरयानी राइस खा लेती हूँ यार। जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: ईद की महकती शाम, चांद की रोशनी और खुशियों का एक हसीन जहान।
3: इस ईद हर लम्हा होगा और भी खास एट अबू सिद्रा मॉल।
2: आइए सेलिब्रेट करिए लयाली ईद 27th, 28th और 29th मई को शाम 6 बजे से 10 बजे तक, जहां इंतजार कर रहा है स्पेक्टैक्युलर अलादीन शो, लाइव एंटरटेनमेंट, एक्साइटिंग किड्स एक्टिविटीज और ढेर सारी ईद सरप्राइजेस। तो इस ईद फैमिली के साथ बनाए यादें सिर्फ अबू सिद्रा मॉल में। योर Ultimate Eid destination.
4: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो Ooredoo ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31st मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
5: Ras Vindom wishes you Eid Mubarak. Radio Olive Eid Majlis.

0: द मजलिस सुन रहे हैं आप
1: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस
0: आपके साथ। जैसे कि आपको पता है कि गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इस गर्मी के बढ़ते ही जब आपके प्लान्स बनते हैं तो वो थोड़ा सा मौसम के हिसाब को देखते हुए बनते हैं, है ना। तो अब ईद की छुट्टियां चल रही हैं तो ऐसे टाइम पे एक ऑप्शन आपके लिए वो भी हो सकती है आपकी और आपकी फैमिली के लिए, अगर आप वाटर बेबी हैं तो। सो बहुत सारे वाटर पार्क में बहुत सारी ऑफर्स हैं जहां पर आप जा सकते हैं। अगर आप ऑफर वाले वाटर पार्क में नहीं जाना चाहते, वैसे भी आपको ऑप्शंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है वो मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपके घर पे या फिर आपके दोस्तों के घर पे पूल है तो वो पूल पार्टी जो है वो भी आप कर सकते हो। बढ़िया सा मस्त वाला खाना साथ में बनाओ और अपने दोस्तों के साथ, नहीं तो बीच में चले जाओ। बीच की फ्री वाली ऑप्शंस भी हैं अपने कतर में बहुत सारी, लेकिन यस पेड ऑप्शन भी हैं जहां पे आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। सो या वाटर पार्क जाके और राइड्स जो है वो भी ले सकते हो। सो वो बढ़िया वाला टाइम पास है आप लोगों के लिए। मस्त वाली फोटोज खींचो, खाओ पियो और ईद की छुट्टियों को एंजॉय करो यार। जियो बिंदास। और क्या क्या चीजें हैं जहां पर आपको डिस्काउंट मिल सकता है, क्या क्या ऑप्शंस हैं ईद पे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव को एंड ईद मुबारक।

0: BBC Atlantis Builders and Developers wishes you Eid Mubarak.
1: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी जियो बिंदास.
2: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
3: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके. और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर. विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.
4: ईद मुबारक.
5: ईद मुबारक.
4: रफीक चाचा ईद मुबारक.
5: आप
4: चचा? मैं इब्राहिम. हर जुम्मे रात आता तुम्हारी बिरयानी खाने को.
5: अरे मियां, तौफीक चाचा को कुछ भी याद नहीं, तब आप भूल गए बिरयानी भी.
6: एक काम करते हैं, इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं.
7: ए, हलो हलो, तौफीक चचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियां. क्यों चचा?
8: सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ.
9: एक मिनट रुको, एक बात शायद आप भूल गए बेटा. ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ.

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतारकदीव डाइसो जापान यू नेम इट वी हैव इट गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम
2: Varadma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Salva Road.
3: And Grand Mall Hypermarket.
4: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village. Or shop online ajwa.qa.
5: Restaurant partner, Kozhikode Star Restaurant.
6: Shadi ki biryani ki to baat hi kuch aur hai. Ab wahi authentic shadi स्टाइल बिरयानी का एक्सपीरियंस लीजिए एट कोझिकोड स्टार रेस्टोरेंट अब बिन उमरान में
7: ग्रो योर ब्रांड अक्रॉस कतर्स की ऑडियंसेस कनेक्ट विद हिंदी लिसनर्स ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम मलयालम ऑडियंसेस ऑन रेडियो सुनो 91.7 एफएम एंड अरबिक लिसनर्स ऑन तत्कार 107.4 एफएम ऑन एयर विजिबिलिटी सपोर्टेड बाय परफॉर्मेंस ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स सिंपल इफेक्टिव इंटीग्रेटेड कॉल 3009-1063 और 3082-1063
8: Hi, this is A.R. Rahman.
9: A.R. Rahman.
10: Eid Mubarak to my brothers and sisters around the world.
8: Radio Olive. Jio Bindas. Jio Bindas.
1: Radio Olive. Eid Majlis. Eid Majlis.
11: This hour is brought to you by
12: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: अच्छा
1: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
2: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
3: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ। इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ।
4: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
3: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
4: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और ये स्पेक्टेक्युलर फेस्टिवल ऑफर।
5: द बिग बिग बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। यस, जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। ऑफर वैलिड अंटिल 13th जून 2026 ओनली। हरी
6: जोयालिकास, वर्ल्ड्स फेवरेट ज्वेलर।
7: अल्दार एक्सचेंज विशेस यू ईद मुबारक।
8: This hour is brought to you by
5: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: ईद पे और भी बहुत सारी डील्स होती हैं, स्टेकेशन डील्स।
1: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस, ईद मजलिस।
0: देखिए इस ईद पे अगर आप ट्रैवल नहीं कर पाए तो कतर में बहुत सारी जगह पे बहुत बढ़िया बढ़िया स्टेकेशंस पर आपको डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एक दो दिन के लिए आप स्टेकेशन जो है अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं और फन कर सकते हैं यार। वैसे बनाना आइलैंड भी बहुत बढ़िया जगह है, बहुत सारे लोग जो है वो बनाना आइलैंड गए नहीं है, तो आप प्लान कर सकते हो यार। और भी बहुत सारी जगह है, स्पेसिफिकली सिर्फ यही नहीं है। सो या ये भी एक ऑप्शन इस ईद पे आप लोगों के लिए हो सकती है, अगर आपको ये नहीं समझ लग रहा यार क्या करें यार क्या ऑप्शन है। सो या स्टेकेशन उनमें से एक ऑप्शन है जहां पे भारी डिस्काउंट भी चल रहे हैं। सो मैंने सोचा आप लोगों से प्यार है तो आप लोगों को बता दूं यार। सुनते रहो रेडियो ऑलिव, कहते रहो जियो बिंदास।

0: Lulu Hypermarket wishes you Eid Mubarak.
1: Happiness free में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि happiness is contagious. Radio Olive, your happiness frequency. Jio Bindas.
2: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके. और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhor.
4: Commercial Bank presents CB 2026 Million Riyals Dream.
5: Ab sirf savings nahi, sapne grow honge. Jeetiye pure 5 million riyals cash prizes.
4: Jeetne ke 4 raste. Pehla, apna account balance badhaiye. Har 10,000 riyals growth par paiye ek coupon.
5: Dusra, agar salary 4,000 plus hai ya 50% save kiya hai, to aap eligible hai.
4: Teesra, naye customers ko pehli salary ya 10,000 funding par guaranteed coupon. Aur chautha, 9 mahine regular salary par paiye ek extra coupon or mega draw ticket.
6: Hello everyone, this is Sana Khan. Wishing you all Eid Mubarak. You're listening to Radio Olive 106.3 Jio Bindas.
7: Radio Olive Eid Majlis. Eid Majlis.
8: This hour is brought to you by
9: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: का त्योहार प्यार का पैगाम आप सभी को रेडियो ऑलिव की तरफ से ईद मुबारक
1: ईद मुबारक
2: सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 FM
3: एंड ईद में बहुत सारे डिस्काउंट्स भी लगते हैं
1: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस
3: ईद में आप क्या क्या कर सकते हो वाटर पार्क्स की बात हो गई स्टेकेशंस की बात हो गई और बहुत सारे डिस्काउंट्स जो हैं वो आपको शॉपिंग पे भी मिलते हैं सो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं उसके साथ साथ बहुत सारी ऑफर्स जो हैं वो रेस्टोरेंट वगैरह पे भी चल रही हैं जहां पर आपको वन बाई वन फ्री मिल रहा है या फिर खाने पे जो है वो डिस्काउंट्स मिल रहे हैं सो बहुत सारी प्रमोशंस बहुत सारी ऑफर्स चाहे वो कपड़े हैं चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक का सामान है चाहे फिर खाने पीने का सामान है तो एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा क्योंकि ईद की यही बेस्ट बात मेरे को लगती है जो कि मैं हर बार ईद के टाइम पे आप लोगों को बताती हूँ जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको तो पता ही है लेकिन जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि यस ईद के टाइम पे बहुत सारी ऑफर्स और प्रमोशंस होती हैं अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो एक बार ऑनलाइन सब कुछ चेक करके जाइएगा जो चीज आपको बेस्ट लगे जो डील आपको बेस्ट लगे गो फॉर इट सिमरन गौर आपके साथ बिंदास ईद मुबारक एक बार फिर से

0: 2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak. Yes, Anil Kapoor and Malabar Gold and Diamonds wishing all of you a happy and blessed Eid.
3: Sagan Burger wishes you happy Eid. Radio Olive Eid Majlis.

0: ईद पर इतने प्रमोशंस ऑफर्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, सुमारा बार गोल्डन डायमंड्स भी क्यों पीछे रहे।
1: रेडियो ईद मजलिस, ईद मजलिस।
0: हाँ जी, ईद मजलिस में आपका स्वागत है। मैं गदी सोनियो के दादी की हालचाल, सत श्री अकाल। सिमरन कौर है आपके साथ। सो शाइन स्मार्टर दिस सीजन विद मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स। अपनी ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी को आप एक्सचेंज करवा सकते हैं, चाहे आपने कहीं से भी खरीदी हो। नए डिजाइंस करिए यार, नए डिजाइन पहनिए, एक्सचेंज करिए। सिर्फ मेकिंग चार्जेस आपको देने पड़ेंगे एंड उसके साथ साथ इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, इसकी वजह से आप 15% तक गोल्ड प्राइजेस में सेव कर सकते हैं अपने कतर में। सो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के शोरूम जब भी टाइम मिले विजिट कर लीजिए, इसका फायदा जरूर उठा लीजिएगा, क्योंकि गोल्ड इन्वेस्टमेंट है यार। सिमरन गौरिया के साथ जियो बिंदास।

0: यूनिमनी एक्सचेंज विशेस यू ईद मुबारक।
1: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhor.
4: This is Amira Dastoor. Eid Mubarak on Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.
5: Jio Bindas.
6: Radio Olive Eid Majlis. Eid Majlis.
7: This hour is brought to you by
8: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: ईद की महकती शाम, चांद की रोशनी और खुशियों का एक हसीन जहान।
0: इस ईद हर लम्हा होगा और भी खास एट अबू सिद्रा मॉल।
1: आइए सेलिब्रेट करिए लयाली ईद 27th, 28th और 29th मई को शाम 6 बजे से 10 बजे तक, जहां इंतजार कर रहा है स्पेक्टाकुलर अलादीन शो, लाइव एंटरटेनमेंट, एक्साइटिंग किड्स एक्टिविटीज और ढेर सारी ईद सरप्राइजेस। तो इस ईद फैमिली के साथ बनाए यादें सिर्फ अबू सिद्रा मॉल में। योर Ultimate Eid Destination.
2: Jewelry Travels wishes you Eid Mubarak.
3: Radio Olive Eid Majlis. Eid Majlis.
4: This hour is brought to you by
5: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: अच्छा क्या ये आपके साथ भी होता है क्या?
1: रेडियो ईद मजलिस
0: अंजी मैं कहती सोनिया की दादी की हालचाल सत श्री अकाल सिमरन कौर आपके साथ ईद मजलिस में हम बातें कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। और मेरा ना लाइफ में चिल करने का तरीका ये है कि जितने कम लोगों को आपकी लाइफ के बारे में पता लगे उतना ज्यादा अच्छा है। सो मेरा एक तरीका है, जब भी मैं नया कॉन्टेक्ट जो है वो अपने व्हाट्सएप पे सेव करती हूँ, है ना, तो सबसे पहले वो नंबर सेव करने के बाद मैं मेरा व्हाट्सएप का स्टेटस जो है वो हाइड कर देती हूँ, क्योंकि वो सारी चीजें जो मैं उस व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल रही हूँ वो मैं नहीं चाहती हूँ कि अब वो सब लोग देखें जिनको मैं दिखाना चाहती हूँ, जो मेरे नियर डियर हैं, है ना। सो उनको मैं दिखाऊंगी वो, बट आपको पता है कि अब तक मेरे इंस्टाग्राम पे जो मेरे स्टेटस एक्सक्लूडेड हैं कितने कॉन्टेक्ट्स हैं? 556 समथिंग, 557 समथिंग हो गए। सो सबसे पहले मेरा यही काम होता है कि अगर मैं किसी का कॉन्टैक्ट सेव कर रही हूँ जो कि मेरा इतना ज़्यादा खास नहीं है, मैंने काम के लिए जो है वो नंबर सेव किया है, तो मैं अपना स्टेटस जो है वो हाइड कर देती हूँ। कभी कभी तो मैं बहुत सारे कॉन्टैक्ट से अपनी डीपी भी हाइड कर देती हूँ। तो क्या आप मेरे साथ मेरी तरह इस तरह से करते हैं क्या? लाइक आप अपनी प्राइवेसी जो है वो मेंटेन रखते हैं इंस्टाग्राम पे, तो जो सब है वो तो है, लेकिन यार व्हाट्सएप थोड़ा सा प्राइवेट हो जाता है यार। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास। और वो लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि अगर मैंने को व्हाट्सएप स्टेटस डाला तो रिप्लाई करते हैं, अरे क्या हो गया, कैसा है भाई। उन लोगों को तो मेरा ब्लॉक करने का मन करता है, लेकिन ब्लॉक नहीं कर सकती, बट हाइड जरूर कर सकती उनसे अपना स्टेटस। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।

0: Qatar wishes you a very happy Eid.
1: Happiness free में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि happiness is contagious. Radio Olive, your happiness frequency. Jio Bindas.
2: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर विद डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके. और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: Shackman ki power packed range, heavy trucks, tippers, trailers aur boom trucks. Damdar performance aur bharosa. Sirf Carmel ke saath. Visit Carmel Group now.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: मैं जैकी श्रॉफ, जैकी श्रॉफ, सबको ईद मुबारक और खुशियां हमेशा. रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास.
6: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस. ईद मजलिस.
7: This hour is brought to you by
8: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: का त्योहार प्यार का पैगाम आप सभी को रेडियो ऑलिव की तरफ से ईद मुबारक
1: सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 FM

0: विद रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: अगर मैं आपको एक वर्ड बोलूं गो टच ग्रास तो आपको क्या लगेगा, जाओ घास को छू लो? नहीं,
2: जेंजी डिकोडेड
3: ऐसे ही क्या
1: दा, दा, दा, दा। बताते हैं, डिकोड करते हैं
4: रेडियो ओलिव ईद मजलिस
1: आपके साथ। सो गो टच ग्रास जो है वो जेंजी का एक कम्युनिकेशन का स्टाइल है। उसका मतलब ये है कि कोई इंसान मान लीजिए बहुत ज्यादा टाइम जो है वो ऑनलाइन स्पेंड कर रहा है और उनको बोला जाए कि भाई जाओ तुम रियल वर्ल्ड को थोड़ा सा देखो जाके और ये ऑनलाइन की दुनिया से निकलो। ये उनका एक सार्केस्टिक वे है टू टेल समवन कि तुम इतना ऑनलाइन टाइम स्पेंड कर रहे हो, बाहर की दुनिया को भी थोड़ा देखो। गो टच ग्रास। सो या नेक्स्ट टाइम आप भी यूज कर सकते हो। सिमरन कौर है आपके साथ।

0: में कुछ नहीं।
1: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है। सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
4: Cosmo Travels wishes you Eid Mubarak.
5: Radio Olive Eid Majlis.

0: अभी ईद का टाइम है, छुट्टी का टाइम है, आप मुझे सुन रहे हैं तो नाम ले लें आपके। ईद मुबारक है जी।
1: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस।
0: जितने भी हमारे लिसनर्स अभी मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबके नाम जानना चाहूंगी, क्योंकि अगर मैंने आपका नाम जान लिया तो मैं आपका नाम अभी के अभी रेडियो पे जो है वो लेने वाली हूँ। सो आपको मेरा नंबर नोट कर रहा है सबसे पहले 3311063। जी हाँ, 3311063। इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ आपने अपना नाम लिख के भेजना है। इंतजार कर रही हूँ आपके मैसेजेस का। नो हाय, नो हेलो, नो वॉइस नोट्स, ओनली नेम जो आपका, आपके अब्बा जान और अम्मी जान ने रखा है 3311063 पर। मरिया, मोतीलाल, पेरू, सलीम, नवदीप, श्रवण, हुंजन, गोपाल, परबेज, राफिया, फैजल, कमल, नरेश, शाहिद, अनूप, अहमद, यूसुफ, सुनीता, एनी, शीतल, बेला, आती, अवान, बिलाल, सलीम, खिजर, रवि, श्याम, संधू, शम्स, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिए, अब आप थैंक यू लिख सकते हैं और अपनी फेवरेट वाली इमोजी बना के भेज सकते हैं, वो बहुत जरूरी है यार।

0: Avo Trading wishes you Eid Mubarak.
1: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद ब्रिलियंट कतार. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
3: Socho, agar savings se aap ban jao millionaire, commercial bank ke save and win campaign mein bhaag lijiye.
4: Har 10,000 Qatari Riyal saving growth pe milega ek coupon. Ya sirf 50% salary save karo and enter the draw.
3: New customer ho, to account kholo. Aur first salary transfer pe guaranteed chance to win.
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक. सेव एंड विन.

दोनों बेकरार हो जाए, रुके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो Ooredoo ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31st मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Bradmark Drew wishes you Eid Mubarak.
4: Radio Olive Eid Majlis. Eid Majlis.
5: This hour is brought to you by
6: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: अभी एक काम देने वाली हूँ आपको मैं, वो काम आपको आज जरूर करना है।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: हाँ जी,
2: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस।
0: ईद मजलिस जो है वो आप सुन रहे हैं। ईद मुबारक सिमरन कौर है आपके साथ। मैं कहीं सुन रहे हो कि ये हालचाल देखो यार, कोई इंसान होता है ना हम सबकी लाइफ में, एक इंसान होता है, अगर नहीं है तो डोंट माइंड ना, कोई बात नहीं, आपके टाइम पे आपको ये इंसान जरूर मिलेगा जिसको देखते ही आपके चेहरे पे जो है वो एकदम लाइट आ जाती है। बिना लाइटों के लाइट जो है वो दिखाई देती है, बिना बल्ब के लाइट जो है वो आपके चेहरे पे आ जाती है और आपकी पूरी बत्ती सी जो है वो दिखने लग जाती है, यानी कि आप इतने ज्यादा खुश हो जाते हो, मतलब आपके अंदर इतना प्यार भर जाता है। उसका चेहरा अगर दिन में एक बार देख लिया या दिन में एक बार उससे बात ना हो तो आप उदास रहते हो। तो अगर आपकी लाइफ में वो इंसान है तो भाई साहब बहुत लक्की हो आप, तो आज उसको कॉल करके बोल देना यार तू इंपॉर्टेंट है, तू खास है यार, तू खास है। आई नो हम ज्यादा जताते नहीं है लेकिन कभी कभी जताना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो बोल दीजिएगा, ईद मुबारक भी साथ में बोल दीजिएगा। लेकिन खास है वो इंसान जो है ना, बस उसको बताना कभी कभी जरूरी होता है। सिमरन गौरी आपके साथ, जियो बिंदास।

0: Leeds Learning Center wishes you Eid Mubarak.
1: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
3: Ibrahim bhai, Eid Mubarak.
4: Eid Mubarak.
3: Rafiq chacha, Eid Mubarak.
4: Aap?
3: Chacha. मैं इब्राहिम.
4: हर जुमेरात आता हूँ
3: तुम्हारी बिरयानी खाने को.
5: अरे मियाँ, तौफिक चाचा को कुछ भी याद नहीं, तब आप भूल गए बिरयानी भी.
6: एक काम करते हैं, इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं.
7: ए, हलो हलो, तौफिक चाचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियाँ. क्यों चाचा?
8: सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ.
9: एक मिनट रुको, एक बात शायद आप भूल गए बेटा, ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों

0: हाँ जी ठीक हो।
1: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस, ईद मजलिस।
0: लेकिन अभी के लिए मेरा यहाँ से घंटी माने का टाइम आ चुका है, बट आपकी और हमारी जो है वो सैटरडे शाम को 5 बजे जबरदस्त इवनिंग्स में मुलाकात होती है। ये ईद मजलिस था, 3 दिन ईद के जो है वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल शो तो नहीं होगा लेकिन वाइब जो है वो ईद वाली डेफिनेटली रहेगी, और आपकी वाइब तो सैटरडे तक रहने वाली क्योंकि आपके ऑफिस जो है वो संडे को ओपन होने वाले हैं, मतलब संडे से स्टार्ट होने वाले हैं। सो फन करिए, ध्यान रखिए, स्टे सेफ, पानी पीते रहिएगा, हाइड्रेट योरसेल्फ, खाने पीने रो, ऐश करते रहो, चेहरे पे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना। बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू 100 किलो।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस्ड फ्रॉम एनीवेयर विद डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
2: Safari Hypermarket wishes you Eid Mubarak.
3: Radio Olive Eid Majlis.

0: Radio Olive 106.3 FM.
1: This is Club Olive. Club Olive.
2: मिलन का त्योहार प्यार का पैगाम आप सभी को रेडियो ऑलिव की तरफ से ईद मुबारक
1: ईद मुबारक
3: सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 FM
2: पिज़्ज़ा हट विशेस यू हैप्पी ईद

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Listeners of Olive Suno Radio Network, this is Shamshir, Marketing Manager, Ansari Gallery. On behalf of Ansari Gallery, would like to issue all of you very blessed and joyful Eid Mubarak. Thank you.
2: Hi, I'm Kiara Advani and you're listening to me on Olive 106.3 FM and wishing you all Eid Mubarak.

कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: 106.3 FM. You're listening to Club Olive.
1: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Aster DM Healthcare wishes you Eid Mubarak.

0: Radio. Radio Olive, 106.3 FM.
1: This is Club Olive.
2: का त्योहार प्यार का पैगाम आप सभी को रेडियो ऑलिव की तरफ से ईद मुबारक
1: ईद मुबारक
3: सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 FM
0: रेडियो ऑलिव 106.

0: Tech wishes you Eid Mubarak.
1: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. So spread the happiness, क्योंकि happiness is contagious. Radio Olive, your happiness frequency. Jio Bindas.
2: Hi, this is Kailash Khe.
3: Kailash Khe.
2: Radio Olive के सभी सुनने वालों को ईद मुबारक. Happy Eid to all.
3: Happy Eid to all.
0: Sky Jewelry wishes.

0: Skyline Automotive में विशेस यू ईद मुबारक।
1: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।
3: हाय दिस इज अरीन खान। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। रेडियो ऑलिव 106.3

0: Radio Radio Olive 106.3 FM.
1: This is Club Olive. Club Olive.
2: Al Shifa Polyclinic wishes you Eid Mubarak.
3: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी
4: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी जियो बिंदास
5: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
6: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम
7: हाय मैं हूं श्रुति पाठक और कतार में रहने वाले सभी लोगों को ईद मुबारक 106.3 FM रेडियो ऑलिव जियो बिंदास

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑल।

this. Radio Olive 106.3 FM. You're listening to Club Olive. That's it.

106.3 FM. You're listening to Club Olive.

Club Olive on Radio Olive. Radio Olive 106.3 FM. You're listening to

अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।